0: गगरी में गेन फले भकरी भाग से ठीक के में तेज में बुरी अच्छा भाग से मारल कुटौआ लात भराग से गिरनु नाटे मई झबाक से
1: अरे बार वो सब पता पैनु यार।

0: मजाई भो चलने गरी ना होटल में आई बो सहुने पटी ना मुर्गी बोलते से मुंटी पिराई ना तारो ने पी बो जीव थसराई ना
1: अरे क्यों तो बताओ यार इमरवन की जिंदगी कैसी कटी ना।

0: साँझको सात बजेको छ।
1: जीतपुर वाली यह साल तो निश्चिंत हो गवा गए।
2: हाँ तब पतलिया याद करो तो जू डराए लागत है। पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत है। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
1: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गवा।
3: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होत है, यही नाते बाढ़ से बचे खरती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे, सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सर सफाई में ध्यान दिया जाए।
4: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
5: केपी पोलिक्लिनिक भुरी गांव में हार्जोनी नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। फेरी अस्पताल नेपालगंज बाट हार्जोनी नशा बा तथा मेरुदण्ड रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश बहादुर थापा आउनुहुने भएकाले सम्बन्धित समस्या भएका बिरामीहरूले समयमा नै नाम दर्ता गरी मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। डाक्टर प्रकाश बहादुर थापाद्वारा हड्डी तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको जाँच तथा जोर्नीमा सुई लगाउने, प्लास्टर गर्ने, अपरेशन गर्ने, रड निकाल्ने जस्ता विभिन्न हड्डी सम्बन्धी उपचार गर्नुका साथै बाटोको उपचार गरिने भएकाले सम्बन्धित बिरामीले सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौ। स्थान केपी पोलिक्लिनिक भुरी गाउँ। थप जानकारीका लागि 084-40-30-82।
6: बाबा आज मेरो साथीको बर्थडे रे, पैसा दिनुहोस् न त, केही गिफ्ट किनेर लिएर जान्छु। उहाँहरू कति धनी हो बक्सिन्छ, कस्तो राम्रो घरमा बसी बक्सिन्छ, कस्तो गाडी चढी बक्सिन्छ।
7: मान्छे धनी दिथे कि खाई बक्सिन्छ, गई बक्सिन्छ, चढी बक्सिन्छ, तर त्यो पैसा कसरी कमायो, त्यसको पछाडि के छ, केही मतलब छैन है, कसरी बिग्रियो हाम्रो समाज।
6: अनि यो 500 के आउँछ र के किनेर लिएर जानु के बाबा?
7: त्यसो भए नजाऊ न, तिम्रो साथीको बुवा र म एउटै अफिसको, म भन्दा जुनियर हो, तर उसले पैसा कसरी कमायो, के गरी कमायो सब थाहा छ मलाई, तर म त्यसरी कमाउन चाहन्न।
6: हजुर जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ के, बस्नुहोस् एक्लै,
8: किन अफसेयर जानेर, मैले के गरेको छ र,
9: के गर्नु भएको छ, के गर्नु भएको छैन, उहाँ गरेको थाहा हुन्छ, हिँड्नुहोस् न खुरुकन हामीसँग।
6: के भो
10: आम्दानीको स्रोत भन्दा धेरै गुणा सम्पत्ति।
7: छोरी आयो बर्थडे पार्टीमा गएर, मैले टिभीमा हेरेको छु तिम्रो साथीको बुवा।
6: हजुरले हिँड्नु भएको बाटो ठिक रहेछ बाबा, तिम्रो बाबालाई आज यस्तै गरी लड्को भएदेखि हाम्रो कसो बेजित हुनुपर्छ हेर त छोरी।
11: इमानदारी त नै सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो, आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरौं।
5: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयो, टंगाल काठमाडौँ।
12: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ बर्दियाको आवाज, रेडियो टाइगर 99.2 MHz, गर्जन त सधैँ बाघ झैँ।

0: ये है आपका रेडियो रेडियो टाइगर वर्दिया की आवाज़ वॉइस ऑफ वर्दिया वॉइस ऑफ वर्दिया।
1: अगर हमारी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी।
2: अगर तुम मर भी गई ना तो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा।

इंग्लिश बोल के बताए। कल हम कूलर के मोटर की बाइंडिंग करा के आए। पूरा नहीं है पर हमारे घर में इतना भी बस हम ही बोल पाते हैं। फुल इंग्लिश बोल के बताए। I love you.

मैं शनि हूँ ये पत्थर का मैंने रूप लिया। एक भगत को शनि देव ने दृष्टांत दिया, मैं शनि हूँ ये पत्थर।